कोट कल्प के दुख बिनासन साच दृढ़ाए न बेरा रहाव। क्रोध निवार जले हौ ममता प्रेम सदा नौरंगी। अनपौ बिसर गए प्रभ जाच्या हर निर्मायल संगी। चंचल मत त्याग पौ भंजन पाया एक शब्द लिव लागी। हर रस चाख त्रिखा निवारी हर रस चाख त्रिखा निवारी। हर मेल लय बडभागी अपरत सिंच पय सुबर सर। गुरमत साच निहालिया मन रत अपरत सिंच पय सुबर सर। गुरमत साच निहाला।

0: जाहे सोग हरख दोहु मह नाहे अनेक ब्रह्मे जाके वेद तुन कर है अनेक महेश बैस ध्यान धर है अनेक पुरख अंसा अवतार अनेक इंद्र उबे दरबार अनेक पवन पावक आर नीर अनेक रतन सागर दात खीर अनेक सूर ससियर नख्यात अनेक देवी देवा बहु पांत अनेक बसदा अनेक काम तेन अनेक पार जात अनेक मुख बेन अनेक आकाश अनेक पाताल अनेक मुखी जपय गोपाल अनेक शास्त्र सिमरत पुराण अनेक जुगत होवत बखयान अनेक सरोते सुनह निधान सर्व जीय पूर्ण भगवान अनेक धर्म अनेक कुमेर अनेक वर्ण अनेक कनक सुमेर अनेक शेख नवतन नाम लेह पार ब्रह्म का अंत नातेह अनेक पुरिया अनेक तह खंड अनेक रूप रंग ब्रह्मांड अनेक बना अनेक फल मूल आप है सूखम आप है असथूल अनेक जुगाद दिनस आर रात अनेक परलव अनेक उत्पात
1: उपात
0: अनेक परलव अनेक
1: लड़ीवार भागां दे उत्पाद ही पाठ ठीक है
2: जिहड़ियां रंगदार पोथियां ने उन्हां विच पाठ उत्पाद ही है उही ठीक है लड़ीवार विच उपात इत्थे भी उत्पाद ही आउणा जी ते जिहड़े लड़ीवार ते पदशेद भागां वाले इस गल दा ख्याल रखियो उत्पात पाठ आएगा उत्पत्ति तो वाचक बन जाना फिर ये उपात दी थां दे विच उत्पात पाठ ये कर लियो हां जी
0: अनेक अनेक परलव अनेक उत्पात अनेक जीव जाके गृह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनेक माया जाके लखी ना जाए अनेक कला खेल हार राय अनेक तुनत ललत संगीत अनेक गुपत प्रगटे तह जीत साबते ऊच भगत जाक संग आठ पहर गुण गाव है रंग अनेक अनाहद आनंद चुनकार उवा रस का काछ अंत ना पार सत पुरख सत अस्थान ऊच ते ऊच निर

पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अन भय का दाता घट घट पूर्ण है अलपाता घट घट पूर्ण कर बिसथीरन जल तरंग जो रचन किया हब रस माने भोग कटाने आन न बिया को थिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता नानक दर्श लीना जौ जल बीना सब देखिए अन भय का दाता कौन उपमा देओ कवन बढ़ाई पूर्ण पूर रहो सरब ठाई पूर्ण मन मोहन घट घट सोहन जब खिंचे तब छाई क्यों ना अराधो मिल कर साधो करी मोहतक बेला आई अर्थ दर्ब सब जो किछ दिसै संग न कछ हो जाई कहो नानक हर हर आराधो कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा हियो अरापो देहो सदेसा देहो सदेसा प्रभ जियो कैसा कह मोहन परवेसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता घट घट जुगता कह ना सकाओ हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पहाया धन सो रिदा जेह चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गवाया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ीदा पाया दुख नाठा सुख घर महबूठा महा आनंद सहजाया कहो नानक मैं पूरा पाया कर कृपा अपने पह आया सारंग की वार महला चौथा राय मह में हसने की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुर बिन मन का ताक ना उपड़ै अवर ना कुंजी हाथ महला पहला अवर ना कुंजी हाथ महला पहला ना भीजै रागी नादि बेद ना भीजै सुरती ज्ञानी जोग ना भीजै सोगी कीतै रोज ना भीजै रूपी माली रंग ना भीजै तीर्थ भवै नंग ना भीजै दाती कीतै पुन ना भीजै बाहर बैठिया सुन ना भीजै भेड़ मरहै भेड़ सूर ना भीजै केते होवै धूड़ लेखा लिखिया मन कै पाए नानक भीजै साचै नाय महला पहला नव शिय खट का करे विचार निसदन उचरै पार अठार तिन भी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुकत क्यों होए नाभ वस्त ब्रह्म अंत न जानिया ना गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिन आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजन माया मोह बधाया गुर प्रसादी उबरे जिन भाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया श्लोक महला दूजा

0: कर लिखिया कर कर करता करे करे मनमुख मरिया गुरमुख तरिया नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा भरम है दूजा लोभाया कूड़ कपट कमाव दे कूड़ो आ लाया पुत्र कलत्र मोह हेत है सब दुख सबाया जाम दर बदे मारिया है भरम है भरमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर पाया सलोक महला दूजा जिन वडियाई तेरे नाम की रत्ते मन माहे
1: तेरते
0: जिन

सकी जय कार आख है थक है आख आख कार सिफती विचार त्रिण ना पायो बपड़ी नानक कह गवार महला पहला अखी परणै जे फिरा देखा सब आकार पूछा ज्ञानी पंडिता पूछा वेद विचार पूछा देवा मानसा जोध करहै अवतार सिद्ध समाधि सब सुनी जाए देखा दरबार अगै सच्चा सच नाय निर्भउ भै बिन सार होर कच्ची मती कच पिच अंधिया अंध विचार नानक करमी बंदगी नदर लंघाए पार पौड़ी नाए मन्या दुरमत गई मत प्रगटी आया नाओ मन्या होमै गई सब रोग गवाया नाए मन्या नाम उपजै सहजे सुख पाया नाए मन्या सांत उपजै हर मन वसाया नाम नानक नाम रतन है गुरमुख हर ध्याया सलोक महला पहला होर सरीक होवै कोई तेरा तिस अगै तुद आखां तुद अगै तुदै सा लाही मैं अंधे नाओ सुजाखा जेता आखण साही सबदी भाखिया भाए सुभाई।

0: करता करे, देखै वारो वार, जे चुपै जे मंगै दात करे दातार, जे चुपै जे मंगै दात करे दातार, एक दाता सब मंगते फिर देखै आकार, नानक एवै जानिया, नानक एवै जानिया, जीवै देवन हार, पौड़ी नाए मन्या सुरत उपजै, नामे मत होई, नाए मन्या गुण उचरै, नामे सुख सोई, नाए मन्या भ्रम कटिया, फिर दुख ना होई, नाए मन्या सा लाहिया, पापा मत धोई, नानक पूरे गुर ते नाओ मन्या, जिन देवै सोई, सलोक महला पहला, शास्त्र वेद पुराण पढ़ंता, पुकारंता अजाणंता, जा बुझै ता सूझै सोई,
1: पुकारंता इदा पाठ कर लो,
0: पुकारंता अजाणंता, जा बुझै ता सूझै सोई, जा बुझै ता सूझै सोई, नानक आखै कूक ना होई, महला पहला, जा हौ तेरा ता सब किछ मेरा, हौ नाही तू होवहै, आपे सकता आपे सुरता, सकती जगत परोवहै, आपे भेजे आपे सदे, रचना रच रच वेखै, नानक सच्चा सच्ची नाई, सच पवै धुर लेखै, पौड़ी नाम निरंजन अलख है, क्यों लखिया जाई, नाम निरंजन नाल है, क्यों पाईऐ भाई, नाम निरंजन वरतदा, रविया सब ठाई, गुर पूरे ते पाईऐ, हिरदय दे दिखाई, नानक नदरी कर्म होए, गुर मिलिऐ भाई,
1: मिलिऐ,
0: नानक नदरी कर्म होए, गुर मिलिऐ भाई, सलोक महला पहला, कल होई कुत्ते मुही, कल होई कुत्ते मुही, खाज हुआ मुरदार, कूड़ बोल बोल भौकना, चूका धर्म बीचार, जिन जीवंदया पत नहीं, मोया मंदी सोए, लिखिया होवै नानका, करता करे सो होए, महला पहला, रन्ना होइया बोधिया, पुरस होए सईयाद, पुरस होए सईयाद, सील संजम सुच पन्नी, खाना खाज अहाज, सरम गया घर आपण, पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है, और ना सच्चा पाल, पौड़ी बाहर भसम लेपन करे, अंतर गुबारी, खिंता झोली बहु पेख करे,
1: दुर्म
0: खिंता झोली बहु भेख करे, दुर्मत अहंकारी, साहिब शब्द ना ऊचरै, माया मोह पासारी, माया मोह पसारी, अंतर लालच भरम है, भरमै गावारी, नानक नाम ना चेतई, जुऐ बाजी हारी, सलोक महला पहला, लख स्यो प्रीत होवै लख जीवन, क्या खुशिया क्या चाओ, बिछुड़या विस होए बिछोड़ा, एक घड़ी मह जाए, जे सौ

0: पौड़ी निम बिरख बहु संचिया अमृत रस पाया बिसियर अमंतर विसाहिया बहु दूध पियाया मन मुख अभिन ना भिजई पत्थर ना वाया बिख मह अमृत सिंचिया बिख का फल पाया नानक संगत मेल हार सब बिख लह जाया सलोक महला पहला मरण ना मूरत पुछया पुछी थित ना वार इकनी लद्या इक लद चले इकनी बदे पार इकना होई साखती इकना होई सार लस्कर सणै दमामिया छुटे बंक द्वार नानक ढेरी छार की पी फिर होई छार महला पहला नानक ढेरी टह पई मिट्टी संदा कोट पीतर चोर बहालिया खोट वे जिया खोट पौड़ी जिन अंदर निंदा दुष्ट है नक वड्डे नक वढाया महाकरूप दुखिए सदा काले मोह माया भलके उठ नित परब नित भलके उठ नित पर दरब हिर है हर नाम चुराया हर जियो तिन की संगत मत करहो रख ले हो हर राया नानक पया किरत कमाव दे मन मुख दुख पाया सलोक महला चौथा सब कोई है खसम का खसम हो सब को होए हुकम पछाणै खसम का ता सच पावै कोए गुरमुख आप पछाणियै बुरा ना दिसै कोए नानक गुरमुख नाम त्याइयै सहला आया सोए महला चौथा सबना दाता आप है आपे मेलन हार नानक सबद मिले ना बिछुड़ है जिना सेविया हर दातार पौड़ी गुरमुख हृदय शांत है नाओ उगव आया जाप तप तीर्थ संजम करे मेरे प्रभ पाया हिरदा सुध हर सेव दे सोह है गुण गाया मेरे हर जियो एवै भावदा गुरमुख तराया नानक गुरमुख मेलियन हर दर सोहाया सलोक महला पहला धनवंता इव ही कहै अवरी धन को जाओ नानक निर धन तित दिन विसरै नाओ महला पहला सूरज चढ़ै विजोग सबसै घटै आर जा तन मन रत्ता भोग कोई हारै को जिणै सब को भरिया फूक आखण कहण ना थमियै नानक वेखै आप फूक कढ़ाए टह पवै पौड़ी सत संगत नाम निधान है जिथो हर पाया गुर प्रसादी कट चानना आ नेर गवाया लोहा पारस भेटिया कंचन होए आया नानक सतगुर मिलिया नाओ पाइया मिल नाम त्याया जिन कै पोतै पुन है तिन्नी दर्शन पाया सलोक महला पहला
1: इतनी ठीक है पाठ टिप्पी तो बिना
0: जिन कै पोतै पुन है तिनी दर्शन पाया सलोक महला पहला त्रिग तिना का जीविया जे लिख लिख विच है नाओ खेती जिन की उजड़ै खलवाड़े क्या थाओ सच्चै सरमै बाहरे सच्चै सरमै बाहरे अगै लह है ना दाद अकल एह ना आखिया अकल गवाइया बाद अकली साहिब सेविया अकली पाइया मान अकली पाड़ कै बुझिया अकली कीचै दान नानक आखै राहो एह होर गल्ला सैतान महला दूजा जैसा करै कहावै तैसा ऐसी बनी जरूरत होवह लिंग चिंग नह होवह ऐसी कहिया सूरत जो ओस इच्छे सो फल पाए ता नानक कहिया मूरत पौड़ी सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया जिस परापत सोल है गुर सबदी मिलिया सतगुर कै भाणै जो चलै हर सेती रलिया जमकाल जोहे न सकई घट चानण बलिया नानक बखस मिलायन फिर गर्भ ना गलिया सलोक महला पहला सच वरत संतोख तीरथ ज्ञान ध्यान इसनान दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान जुगत धोती सुरत चौका तिलक करणी होए पाओ भोजन नानका विरला ता कोई कोए महला तीजा। नौमी नेम सच जे करै काम क्रोध तृष्णा उचरै दसवीं दसे द्वार जे ठाकै एकादशी एक कर जाणै।
2: जेड़ा उचरै ऊड़े नूं थोड़ा जिहा वखरा करके उच्चारण करना काम क्रोध तृष्णा उचरै इहदा अर्थ ऊ विशेष करके इन्हां विकारां नूं चरै दा अर्थ हुंदा चर लैणा खा लैणा अपाप कर देना यह अर्थ बनेगा।
0: काम क्रोध तृष्णा ओ चरै दसवीं दसे द्वार जे ठाकै एकादशी एक कर जाणै द्वादशी पांच वसगत कर राखै तौ नानक मन मानै ऐसा वरत रही जै पाडे होर बहुत सिख क्या दीजै पौड़ी भूपत राजे रंग राय संच है बिखमाया कार कार हेत बधाए दे कार कार हेत बधाए दे पर दरब चुराया पुत्र कलत्र ना विस है बहु प्रीत लगाया वेख दिया ही माया तो हे गई पछुत है पछुताया जामदर बद्दे मारिय है नानक हर पाया सलोक महला पहला ज्ञान विहूणा गावै गीत भुखे मुला करे मसीत मखटू होए कै कन पड़ाए।
2: मखटू पाठी ठीक है
0: मखटू होए कै कन पड़ाए फकर करे होर जात गवाए फकर करे होर जात गवाए गुर पीर सदाए मंगण जाए ता कै मूल ना लगी है पाए काल खाए किछ हथ हो दे नानक राहो पछाण है से महला पहला मनहो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधै उंधै कवल दिसन खरे करूप एक कह जाण है कहया बुझ है ते नर सुगड़ सरूप एक ना नाद ना वेद ना गी रस रास कास ना जानंत एक ना सुध ना बुद्ध ना अकल सार अखर का पेयो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी गुरमुख सब पवित है धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया जो हर नाम ते आए दे तिन तोट ना आया गुरमुखा नदरी आवदा माया सुट पाया नानक भगता होर चित ना आवई।

हर देह सुभाए, हर दर्शन की प्यास है दर्शन त्रपताए। खेन पल घड़ी ना जीवऊ, बिन देखे मरा माए, सतगुर नाल दिखाले।

तू मेरो ठाकुर जन उरा तू पूरा दास अनिन मेरो निज रूप दर्शन निमख ताप त्रय मोचन परसत मुकत करत गृह कूप रहाओ मेरी बांधी भगत छडावै बांधै भगत ना छूटै मोह एक समय मोह को गह बांधै तौ फुन मोह पै जवाब न होए मैं गुण बंद सगल की जीवन मेरी

0: नर क्या पुराण सुन कीना अन पावनी भगत नहीं उपजी भूख है दान ना दीना रहाओ काम ना बिसरियो क्रोध ना बिसरियो लोभ ना छूट्यो देवा पर निंदा मुख ते नहीं छूटी निफल पई सब सेवा बाट पार कर मूस बिरानो पेट भरै अपराधी जेह परलोक जाए आप कीर्त सोई अविद्या साधी हिंसा तौ मन ते नहीं छूटी जीव दया नहीं पाली परमानंद साध संगत मिल कथा पुनीत ना चाली छाड़ मन हर बिमुखन को संग सारंग महला पंजवा सूरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्ब सब अर्प्यो आनंद सहज तुन झोक रहाओ दर्शन पेख पय निर्बिखई पाए है सगले थोक आन बस्त स्यो काज न कछु है सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर ताज आन जो चाहत जो पुष्टि तन जोक सूरदास मन प्रभ हाथ लीनो दीनो एहो परलोक सारंग कबीर जियो।
1: ये जो शब्द आप जी ने सरवण किया है आरंभ दे विच एक पंक्ति लिखी है उन्हों ध्यान दे नाल देखना ते विचार करनी छाड़ मन हर बिमुखन को संग एक कोई पंक्ति लिखी है साढ़े मन दे विच शंका होनी कुदरती गल है भी एको पंक्ति ना कोई इसका सिरलेख तो ना ही अगे कुछ लिखिया मिलता है तो जे अगे आप पढ़ते भी हाँ तो सारे ने सुनिया भी है सारंग महला पंजवा सूरदास पंजवें पातशाह का शब्द लिखा होया है इन्हें बारे संप्रदायी विद्वान महापुरख ये विचार दसते आए हैं सूरदास जी धन गुरु अर्जन देव महाराज के पास आए सारे भगती आए तो गुरु महाराज ने भगत सूरदास जी को बेनती की तुसी भी बाणी उच्चारण करो जदों उन्होंने गुरु महाराज का वचन सुनिया उन्हां दे मुख तो इको ही पंक्ति निकली जिहड़ी उपर लिखी हुई है छाड़ मन हर बिमुखन को संग इन्ना कह के वो खामोश हो गए खामोश ही नहीं होए उन्हां दी बिरती अंतरमुख हो गई समाधि लग गई ते गुरु महाराज ने फिर उन्हां दी ये अवस्था तक के वो तो हूँ कुछ बोल नहीं सी रहे फिर सतगुरु ने अपने मुखारबिन तो ये पवित्र शब्द उच्चारण किया तो सूरदास जी के संबंध में है सारग महला पंजवा सूरदास अगली जिहड़ी पंक्ति है उहदे विच गुरु महाराज ने स्पष्ट कर दिता सूरदास मन प्रभ हाथ लिया दिनों यो परलोक भगत सूरदास जी के मन में अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपने हाथ में ले लिया इहदा मतलब की है उन्हां दी समाधि लगी दिनों यो परलोक ते उन्हां नूं इस धरती ते रहिंदियां होया परलोक दे दर्शन करवा दिते रब दी दरगाह दे दर्शन करवा दिते ऐसे अध्यात्मिक सिद्धांत वाला शब्द ते सूरदास जी दे संबंध विच गुरु अर्जन देव महाराज ने उच्चारण किया ते उन्हां दी हाजरी लवाई लो हुण अगला शब्द भी आप संगतन सरवण करो
0: सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब फन का रहाओ आगे कौ किश तुलहा बंद हो क्या प्रभासा धन का कहा विश्वासा इस भांडे का इतनक लागे ठन का सगल धर्म पुन फल पावहो धूर बांचहो सब जन का कह कबीर सुनहो रे संत हो एहो मन उडन पंखेरू बन का।
2: इत्थे हुण आपां ब्रेक कर लैणे आ जी, जल पानी छक के आप जी वापस आ जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

फल चंदन वास मानस का फल घट मह सास सास गया काया ढल पाए ताक पाछ कोय ना खाए कंचन काया निर्मल हंस जिस मह नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस सच नाए मलार महला पहला दुख महोरा मारन हर नाम सिला संतोख।

साहेब देख्या भैन ऊडा ऊड चढ़ा असमान साहेब समृथ तेरह तान जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहेब बीर जिन तन साज दिए नाल खंभ आत तृष्णा उडने की डांज नदर कर।

तार, भव जल सबद लंघावन हार, दर साचै दिसै सचियार, बहु करम करे सतगुर नहीं पाया, बिन गुर परम भूले बहु माया, होमै ममता बहु मोह वधाया, दूजै पाए मन मुख दुख पाया, आपे करता अगम अथाह, गुर सबदी जपिया सच लाहा, हाजर हजूर हर वे परवाह, नानक गुरमुख नाम समाहा, मलार महला तीजा, जीवत मुकत गुरमति लागे, हर की भगत अन दिन सद जागे, सतगुर सेव है आप गवाए, हौ तिन जान के सद लागौ पाए, हौ जीवा सदा हर के गुण गाई, गुर का सबद महारस मीठा, हर कै नाम मुकत गत पाई, रहाओ माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुगद गवार, अन दिन धंधा करत विहाए, मर मर जम्मै मिलै सजाए, गुरमुख राम नाम लिव लाई, कूड़ै लालच ना लपटाई, जो किछ होवै सहज सुभाए, हर रस पीवै रसन रसाए, कोट मदे किसहै बुझाई, आपे बखसे दे वडियाई, जो तुर मिलिया सो विछुड़ न जाई, नानक हर हर नाम समाई, मलार महला तीजा, रसना नाम सब कोई कहै, सतगुर सेवे ता नाम लहै, बंधन तोड़े मुकत घर रहै, गुर सबदी अस्थिर घर बहै, मेरे मन खाहे रोस करीजै, लाहा कल युग राम नाम है, गुरमत अन दिन हिरदै रवीजै, रहाओ बा बीहा खिन खिन बिल लाए, बिन पिर देखे नींद न पाए, एहो विछोड़ा सहया न जाए, सतगुर मिलै ता मिलै सुभाए, नाम हीन बिनसै दुख पाए, तृष्णा जलिया

0: गुरमुख तुरिया गुण उर तार, गुर मानै मानै सब कोए, गुर बचनी मन सीतल होए, चहो जुग सोभा निर्मल जन सोए, नानक गुरमुख विरला कोए, राग मलार महला चौथा, घर पहला चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद, अन दिन हर हर ध्यायो हिरदय, मत गुरमत दुख विसारी, सब आसा मनसा बंधन टूटे, हर हर प्रभ कृपा धारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुर देख मेरा मन बिगस्यो, जन हर भेट्यो बनवारी, रहाओ जिन ऐसा नाम विसारिया, मेरा हर हर तिसकै कुल लागी गारी, हर तिसकै कुल पर सूत ना करियो हो, तिस बिदवा कर महतारी, हर हर आन मिलाव हो गुर साधु, जिस अहनिस हर उर तारी, गुर डीठै गुर का सिख बिगसै, ज्यो बारक देख महतारी, धन फिर का एक ही संग वासा, विच होमै भीत करारी, गुरपुरै होमै भीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी, मलार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करहै उद्दम धूर साधु की ताई, किल विख मैल परे परे हमरै विच, हमरी मैल साधु की धूर गवाई, तीर्थ अठसठ मज्जन नाई, सत संगत की धूर परी उड नेतरी, सब दुरमत मैल गवाई, रहाओ जाहरण भी तपै पागीरथ आनी।
1: तीर्थ अठ सठ मज्जन नाई, ये नाई पोला बोलना नाम दा वाचक है।
0: तीर्थ अठ सठ मज्जन नाई, सत संगत की धूर परी उड नेतरी, सब दुरमत मैल गवाई, रहाओ जाहरण भी तपै पागीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन सोभा पाई, जितने तीर्थ देवी थापे, सब तितने लोचहै धूर साधु की ताई, हर का संत मिलै गुर साधु, लै तिसकी धूर मुख लाई, जितनी श्रेष्ठ तुमरी मेरे स्वामी, सब तितनी लोचै धूर साधु की ताई, नानक लिलाट होवै जिस लिखिया, तिस साधु धूर दे हर पार लंघाई, मलार महला चौथा, तिस जन कहो हर मीठ लगाना, जिस हर हर कृपा करै, तिस की भूख दुख सब उतरै, जो हर गुण हर उचरै, जप मन हर हर हर निस्तरै, गुर के बचन करन सुन ध्यावै, भव सागर पार परै, रहाओ तिस जन के हम हाठ बिहाजे, जिस हर हर कृपा करै, हर जन को मिलिया सुख पाइयै, सब दुरमत मैल हरै, हर जन को हर भूख लगानी, जन त्रिपतै जा हर गुण बिचरै, हर का जन हर जल का मीना, हर बिसरत फूट मरै, जिन एह प्रीत लाई सो जानै, कह जानै जिस मन धरै, जन नानक हर देख सुख पावै, सब तन की भूख टरै, मलार महला चौथा, जितने जी जंत प्रभ कीने, तितने सिर कार लिखावै, तितने सिर कार लिखावै, हर जन को हर दीन वडाई, हर जन हर कारै लावै, सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर भौ जल जगत तरावै, रहाओ जो गुर कौ जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, भरम भूले अज्ञानी अंधले, भ्रम भ्रम फूल तोरावै, निर्जीयो पूज है मड़ा सरेव है,
1: पूज है
0: निर्जीयो पूज है मड़ा सरेव है, सब बिरथी काल गवावै, ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहियै, हर हर कथा सुनावै, तिस गुर कौ छादन भोजन पाठ पटंबर, बहु बेद सातकार मुख संच हो तेस पुन की फिर तोट न आवे सतगुर देव परतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावे सतगुर भाग भले तिस जन के जो सतगुर भाग भले तिस
1: नानक भाग
2: नानक भाग
0: नानक भाग भले तिस जन के जो हर

जागी सुन उपदेश भय मन निर्मल गुण गाए रंग रंगी एहो मन दे किए संत मीता कृपाल भय बडभागी महा सुख पाया वर्ण ना साकाओ रेन नानक जन पागी मलार महला पंजवा माई मोहे प्रीत देहो मिलाई सगल सहेली सुख हर सूती सगल सहेली सुख भर सूती जेहे घर लाल बसाई सगल सहेली सुख भर सूती जेहे घर लाल बसाई रहाओ मोहे आवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रे संग राती एह होमे की ती ठाई भई नमाणी सरन एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिलम ना लाओ बरस प्यारे मनह सधारे होए अनद सदा।

अपने प्रीतम स्यो बन आई, अब अपने प्रीतम स्यो बन आई, राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवै निध पाई, उदौत भयो पूर्ण भावी को, भेटे संत सहाई, सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार बहम लिवलाई, तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण त्याई,

मिटे कलेस तिसन सब बूझी पार बहम मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारे बहुर नाकतहू ताया मन तन नाम निरंजन राताओ चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास सरनाया मलार महला पंजवा बिशुरत क्यों जीवे ओए जीवन चित है उलास।

शुद्ध उच्चारण संबंधी पठन पाठ विचारा होइया बाणी पढ़दिया विचार करदिया कीर्तन दी हाजरी भरदिया होइया बेअंत प्रकार दिया भुलां दी मुआफी बख्शनी अगे तो सुमत बख्शनी।

एक की अरदास, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, सो कहो टल गुरसेवी है, एहन इस सहज सुभाए, दर्शन परसे है गुरु का जन्म।

हो, जिस पास बैठे आसो ही है, सबना दा वेसा हो सतनाम। श्री वाहे गुरु जी तना श्री महला चौथा।

0: सो ऐसा हर त्याई मेरे जियड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तिना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जियड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन भया तह उपाध गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जाप हर भव जल तरना जह हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर भव जल तरना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी सोट महला पांजे वाह गुर का शब्द रखवारे चौकी चौ गिरद हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभा बनासी ता की सेवन बिरती जासी आनंद करह तेरे दासा जा पूर्ण हुई आसा बिलावल महला पांजे वाह ताती वाह उन्हन लगाई पार ब्रह्म शरणाई जो गिरद हमारा राम कार दुख लगे न पाई सतगुरु पूरा भेटिया जिन बणत बनाई।

जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू न छुट है निकट न जाई हो दूत श्लोक महला पांजेवा मन मह चित बो चित।

चार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोन लेवलाय तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल भख खाहे असंख निंदक सिर करहै भार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोह असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता किता तेता नाओ बिन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोता उत्तर सो खेह मूत पलीते कपड़ होए दे साबून लइया ओह धोए भरिया मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जानै रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीकाओ साजे आपे जानै सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का हुवै नानक जे को आपाओ जानै अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात सहस अठार है कहन कतिबा असलू एक तात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाही इति सुरत ना पाईया नदिया अतै वाह पव है समुंद ना जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा से तिमाल तन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनहो ना विसर है अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करण देन ना अंत अंत ना वेखन सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण कित बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवै कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगह जोध अपार
ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਤੁਟਹਿ ਵੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਾਧ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹੇ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖਹਿ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਿ ਸਾਹੀ ਪਾਤਿ ਸਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ,

ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾ ਕੀਆ ਗੱਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਾਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਾਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਾਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆ ਬੁਰੇ ਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਨ ਕਹਿਤ ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ
नमस्तं निर्दूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं परपोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेसे नमस्तं निर्तामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुवनमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्तदयाले नमस्तं अबरणे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छांद त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अबरण हैं अपूत हैं अपरण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंद हैं अबंद हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरसरीक हैं निर्लंब हैं असंब हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ते स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ते बेपूते कलंकं बिना ने कलंके स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपुगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छांद
जले हैं, थले हैं, अपीत हैं, अपेय हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अपेश हैं, पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे, नमस्तवं परमाथे, नमस्तवं अगंजे, नमस्तवं अपंजे, नमस्तवं अकाले, नमस्तवं अपाले, नमो सर्व देशे, नमो सर्व पेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृसं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे को कर्मं परनासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी, चरपट छांद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भुगे, अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले, रुआल छांद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रिसाल, नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख, देश और ना पेस जाकर रूप रेख ना राग जतर तत्र दिशा विसा हुए फैलो अनुराग, नाम काम बेहीन पेखत ताम हून है जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, देव पेव ना जान ही जेह बेद और कतेब, रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब, तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चतर चाक मान ही पुरतीन, लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप, परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार, कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत, अपूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन, मुकत दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत, अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार, सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जान ही जिह रूप रंग अर रेख, परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही वह चित, मद पार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु, राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंदर बालान बाल, रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण परनाम निरपय निकाम,
ਅਤ ਦੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ ਅਲਿਸਿਆ ਕਰਮ ਅਦ੍ਰਿਸਿਆ ਧਰਮ ਸਰਬਾ ਭਾਰ ਨਾਢੈ ਅਨ ਡੰਡ ਬਾਢੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੁਐ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਅੰਗ ਕਰਿਅੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ ਪੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਜਾਣੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨਿਆ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨਿਆ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਭਰਮੰਗ ਨਾ ਪਿੱਤਰੈ ਨਾ ਕਰਮੰਗ ਨਾ ਕਾਏ ਅਜਨਮੰਗ ਅਜਾਏ ਨਾ ਚਿੱਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਪਰੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰੈ ਪ੍ਰਥੀ ਸੈ ਅਦੀਸੈ ਅਦ੍ਰਿਸੈ ਅਕ੍ਰਿਸੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥਤੇ ਕਿ ਆ ਛਿਜ ਦੇਸੈ ਕਿ ਆ ਭਿਜ ਭੇਸੈ ਕਿ ਆ ਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕਿ ਆ ਭੰਜ ਭਰਮੈ ਕਿ ਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕਿ ਆ ਦਿੱਤ ਸੋਕੈ ਕਿ ਅਵਧੂਤ ਬਰਨੈ ਕਿ ਵਿਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕਿ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੰ ਤੁਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੋਕ ਬਰਨੈ ਕਿ ਸਰਬਾ ਅਭਰਨੈ ਕਿ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛਤਰੰ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪੈ ਕਿ ਅਨੁਭਉ ਅਨੂਪੈ ਕਿ ਆਦਿ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਭੇਵ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਰੰਗ ਬੇਹੀਨੈ ਕਿ ਏਕੈ ਅਧੀਨੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰਜਾਕੈ ਰਹੀਮੈ ਰਿਹਾਕੈ ਕਿ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫਬੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇਹਾਂਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾ ਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾ ਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸੋਖੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪੋਖੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਤਰਾਣੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦ੍ਰੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦ੍ਰੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ ਕਿ ਪਰਮੰ ਫੀਹੀਮੈ ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕਿ ਹੁਸਨੁਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾਨੈ ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀਫੁਲ ਅਜੀਮੈ ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੋ ਜੁਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੋਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਅੰਗ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੈ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਧੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ਸੁ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੈ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਚਿਜ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ
अभंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अदूत है, अनास है, उदास है, अतंद है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्वय प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल छांद त्वय प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे, निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय, निरसाकं सरीक है, अमितो अमीक है, सदैवं प्रभा है, अजय है, अजा है, भगवती छंद त्वय प्रसाद, के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमेशुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुसनल चराग है, के कामल करीम है, के राज करहीम है, के रोजी देहांद है, के राज करहिंद है, करीमुल कमाल है, के हुसनुल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकान है, हिरासुल फिकान है, कलंकं परनास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजाय करहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकं परनास है, बिहेस्तुल निवास है, के सर्बुल गवान है, हमेशुल रवान है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परं परम ईस है, समस्तुल अदीस है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जुर्रत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विभूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनांग है, के अमितो अपंग है, मद पार छंद त्वय प्रसाद, मुन मन परनाम गुण गण मुदाम, अर बर अगंज हर नर प्रभंज, अन गण प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अनुभव अनास, मुन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम, जल थल मुदाम, अनछिज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गतमित उदार, जल थल अमंड, दिस विस अपंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, त्रित धर तुरास, आ जान बाहु, एक सदाह, ओंकार आदि कथनी अनाद, खल खंड ख्याल, गुरबर अकाल, घर घर प्रणाम, चित चरण नाम, अनछिज गात, आजिज न बात, अन झंझ गात, अन रंज बात, अन तुट भंडार, अन थट अपार, आडीठ धर्म, अत ढीठ कर्म, अन बरन अनंत, दाता महंत, हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद, करुणालय है, अर कालय है, खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, काल कारण है, सर्ब उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वं पर है, सर्वं कर है,
सर्ब पास्या हैं, सर्ब नास्या हैं, करुणाकर हैं, विश्वंभर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंडस हैं, खालखंडस हैं, पारते पार हैं, करुणाकार हैं, अजपा जाप हैं, अथपा थाप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, धरणी तृत हैं, अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता मृत हैं, नर नायक हैं, खलकायक हैं, विश्वंग पर हैं, करुणालय हैं, नृप नायक हैं, सर्व पायक हैं, भाव भंजन हैं, अर गंजन हैं, रिप तापन हैं, जाप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकार हैं, हर्ता हार हैं, परमात्म हैं, सर्व आत्म हैं, आत्म बास हैं, जास के जास हैं, पुजंग पर्यात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेपूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासी सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर पुगते स्वयं पाव सुबं सर्वदा सर्व जुगते दो कालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दो कालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साही दसवी त्वै प्रसाद सवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहयो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतांग जरे जर सांग अनूप उतांग सुरांग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत सीस ना जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सीधारे
तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर जान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरूर मवासन मातिम तंगन मान मलैंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया दानव देव पनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेसर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहाओ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लखियो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पात साहि दसवी कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहै हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवार सेवक सिख सबै कर तारा मोह रक्षा निज कर दै करियै सब बैरन कौ आज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो बार चाहऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास ने वरिया हुजो सदा हमारे पछा श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा
सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी सेवकियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है घट घट के पट पट की जाना है जब उदकरख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंभ आदि अनिल अनादि असंभ ताका मूड उचारत भेदा जा को भेव न पावत बेदा ताकाओ कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भिव आप अपनी बुद्ध है जिति बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो संकर एकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरे तुम करो सिखे उबार असिखे संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रान काता जे अस तुज तव सरणी परे तिन के दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्या है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध धारमो सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठाउर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छाय करता श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई
दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै हो जो या की एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सतरह सहस पनिजै अर्ध सहस पुन तीन कहिजै भाद्रव सुदि अष्टमी रविवार तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जाब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहियो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तो हाँ।

छाड कै गहयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया। सहज सेती मन वजिया वाधाइया, राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया। शब्दो ता गावहो हरि केरा, मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ। सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो। तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है। जिस देह सो पावे सदा सिफत, सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मन आए वस्या। जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो। जिस दिया एह वडियाईया, कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे कला। जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया धुर कर्म पाया। तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ। तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमानी, देह निमानी लिवै बज हो क्या करे वेचारिया। तुद बाज समरथ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया। एस नौ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया, कह नानक लिवै बज हो क्या करे वेचारिया। आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया जानिया। आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदर हो जिन का मोह टुटा, तिन का शब्द सचै सवारिया। कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू देहे सोई जान पावै, पावै ता सो जान देहे। जिस नो होर क्या करहै वेचारिया, एक भरम भूले फिर है दह दिस। एक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल। जिना भाणा पावै कह नानक जिस देहे प्यारे, सोई जान पावै। आवहो संत प्यारे हो, अकथ की करहै कहानी, कर है कहानी अकथ केरी। कित द्वारै पाईऐ तन मन धन सब सौप गुर कौ। हुकम मन्नै पाईऐ हुकम मन्नहु गुरु केरा, गावहु सच्ची बाणी। कह नानक सुनहु संतहु कथिहु अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया, चतुराई ना पाया किनै तेरा। चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया, एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया। माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विट हो जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले। एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले,
साथ तेरा चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइऐ ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइऐ सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किनै तेरा अपना आप तू जान हे जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखान ए आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा किनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाए एक वेख परसन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता हकेरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्या हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समानी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यो तू चलाए हे तिव चलह स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए हे तिवै चलह जिन्ना मार्ग पाव हे कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव हे जिसनो कथा सुनाए हे अपनी से गुरद्वारा सुख पाव हे कह नानक सच्चे साहिब ज्यो पावै तिवै चलाव हे एहो सोहिला शब्द सुहावा सबदो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरहो लिखिया आया एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गल्ली किनै ना पाया कह नानक सबद सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटंब सहत स्यो पवित संगत सबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै विन सहजै सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसै जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन धोवा हो शब्द लाग हो हर स्यो रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा एव जाए जियहो मैले बहरहो निर्मल जियहो ता मैले तिनी जन्म जुआ हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा मरन मनहो विसारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यो बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुआ हारिया जियहो निर्मल बहरहो निर्मल बहरहो ता निर्मल जियहो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी कूड़ की सोए पहुचै नाही मनसा सच समानी जन्म रतन जिनी खटिया भले से वन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै ता सनमुख सिख कोई जियहो रहै गुर नाले गुर के चरण हिरदै त्याए अंतर आत्मै समाले आप छड सदा रहै परनै गुर बिन अवर न जानै कोए कह नानक सुनहो संतहु सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते वेमुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै पावै मुक्त ना होर थै कोई पुछो बिबेकी आ जाए
अनेक जुनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देख हो बिन सतगुर मुक्त ना पाए। आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावहो सच्ची बाणी। बाणी ता गावहो गुरु केरी बानिया सिर बानी। जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदय तिना समानी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारिग पानी। कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बानी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बानी। बानी ता कच्ची सतगुरु बज होर कच्ची बानी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखानी। हर हर नित कर है रसना कहया कछु ना जानी। चित जिन का हिर लया माया बोलन पैर वाणी। कह नानक सत गुरु बज होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द सेति मन मिलिया सच्चा लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे। जिसनो दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाए कै करता आपे हुक्म वरताए। आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एकस सेव लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी। तत्तै सार ना जानी गुरु बज हो तत्तै सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी। गुर किरपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसया बोलह अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागै जागत रैन विहानी। माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यो मनहो विसारिय। मनहो क्यो विसारिय ए वडदाता जे अगन मह आहार पहुचावे। ओसनो केहो पोहे ना सकी जिस नौ अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया। कह नानक ए वडदाता सो क्यो मनहु विसारिया। जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जे ही करता खेल रचाया। जात इस भाणा ता जम्या परवाल परवार भला पाया। लिव छुड़के लगी तरिसना माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए। मुल न पाया जाए किसै विटहो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौपिया विच हो आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वन जारा। हर रास मेरी मन वन जारा सतगुर ते रास।

कोई माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत एही, सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, हुवै सिफत खसाम दी, नूर अरसहु कुरसहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते साह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साह, सिर साहां दै साहो, जिस पास बैठिया सोहिया,

ठाकुर देसा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की

दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सचे पात साह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सच्चा पात साह सिरसाहां दै साह जिस पास बैठियां सोही है सबना दावे साह।

0: graça de
1: तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोए न जाने ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरै

साहिब जी रतना रतन पदार्थ बहुसागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मूल रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे भंडारा समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुर गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद ना पाई बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहै सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे को तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखहो सरनाई सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए

सहज स्वभाव साध आदम उपाद को गुंजा फल मानक संसार तुला तार बिख तोल कै समान मोल अल्प अगाध को गुंजा फल मानक संसार तुला तार बिख तोल कै समान मोल अल्प अगाध को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल चवर छतर तख जी दे मालक दसा ही पातशाहियों की आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुंदर सजे हुए दीवाना अंदर हाजरियां लगवा रही गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड भागे हाँ अकाल पुरख वाहिगुरु जी की मेहर सदका आपां नूं संगत विच आउण दीआं सुभाग घड़ियां प्राप्त हो रही ने। दास तो पहलां बहुत ही सन्मान जो कीर्तनी है भाई गुरदयाल सिंह जी तिन्हां दे कीर्तनीय जथे पासों आप संगतां ने अमृतमई पावन गुरबाणी दा कीर्तन सरवण करके लाहे लए ने। आओ गुर संगत जी हुण समा होया जो चल रही लड़ीवार पावन गुरबाणी श्रीमान भाई गुरदास जी दे उचारण कीती हुई कबित सवैयां दी विचार आपां सरवण करदे आ रहे हाँ। शब्द की विचार दे नाल जुड़ के जीवन नूं सफला बना सकीए सारी संगत दिओ असीस रसना करो पवित्र प्यार सत्कार सहित उचारण करो।

सुंदरा काल पाए कर भीषण प्रकाशा सगल काका की आत्माचा जमन का जोगी शिव की वेद राज ब्रह्मा ज्योति जमन का सलो स्वारा नमस्कार है ताई हमारा जमन का सब जत मनायो देव दया जश्न बुझायो आदि अंत के अवतारा सोई गुरु समझ हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजा जनिया सवारी शिवकन को सब गुण सुख दिया संतरन को परम बंध गया कट कट के अंदर की जानता भले बुरे की पीर पहचानता चिंटी दे कुंज रसूला सब पर कृपा दिष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की भी बचाना घट घट के पड़बड़ की जाना जब्द कर करा कर तारा प्रजा तर तब देह अपारा जब आखर करतो कब हो तुम मैं मिलते हे तर सब हो जेते बदन से सब तारा आप अपनी बूझ उचारा तुम सभी तेरे निरालमा जानत भेद भेद अरियालमा निरंकार निर्भगा निर्लंब आदि अनिल अनाद असंभ ताका मूल विचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पहन अनुमानता मां मूल गच भेजना जानता मां देखो कै सदा सेवा निरंकार का चिंतन है पेवा आप अपनी बुद्ध है जती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखन जय पसारा केव सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुस्वरूपा रंग पयो राव कई पूपा अंडा जेर सेतनी उत्पज खान बौरज देनी कौ पू राजा वह बेटा कौ सिमट पै शंकर इकैटा सिगरी सिष्ट दिखाए अचंपावा आद जुगाद स्वरूप स्यम पावा अब रचा मेरी तुम कराओ सिख उबार ऐसे संग्राओ दुष्ट जीते उठ तुत पाता सगल मेज करोड़न गाता जिया तुत सन्नी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे भुख जन परे त्यारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल कोई कबा त्याय है ताके काल निगने हैं रचाओं तह सब काला दुष्ट अरि टरे तत्काला कृपा दिष्ट तन जाय निहर हो ताके ताप तनक मोहर रिद सतकर्म शुभ होई दुष्ट सास है सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल पाते ताई उबारा जिन नाम त्यारो कहा दारद दुष्ट दो तेरा खड़क के मैं शरण त्यारी आबाद लियो बारी
सर्व धर्म हो सहाई, दुष्ट दोगते लियो बचाई सवैया, पाए गए जवते तुमरे, तबते कौवा तरे नियानियों, राम रही पुराण कुरान, अनेक है मत एक न मानियों, सिमरत सातल बेसब बोपेद गायम एक न जानियों, श्री असबान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तुहे बखाने दोरा, सगल द्वार को चाड़ गयो तुहारो द्वारा, बाहें गए की लाज ऐसा, गोविंद दास तुहार, सगल द्वार को चाड़ गयो तुहारो द्वार, बाहें गए की लाज ऐसा, गोविंद दास तुहार, राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुर तै पाया सह सहती मन वजियां वाधाइया, राग रतन परवार पईया शब्द गावनिया आईया, सब तो तै गाओ हरि केरा, मन जिनी बसाया कह नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया, तू सदा रहो अनाले, अना रहो तू मन मेरे, दू सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा, काज सब सवारना, सबना गला सम्रत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं करते रह, करता तेरा सब विचै, जिस देश सो पावे, सदा सिसला तेरी, नाम मन वसावै, नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नान सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुखमन आए वसिया, जिन इच्छा सब पूजाइया, सदा कुर्बान किता गुरबिट हो, जिस दियां ए वडियाइया, कह नान सुनो संतो, सब थरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे, कला जितगर धारिया, पंच दूत दवास कीते, काल कंटक मारिया, तुरकन पया तू जिनको, से नाम हर के लागे, कह नानक तैसुक होवा, तितकर अनहद वाजे, अंध सुनो वड पागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पर पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रो संताप उतरे, सोनी सच्ची बाण, संत साजन पै ससे, पूरे गुड़ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवेता, सतगुरिया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजी अनह तूरे, मुद्दावनी महला पंजवां।

अमृत नामा ठाकुर का पयो जिसका सब सब अदारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदार। यह वस्ता तजी न जाई नित नित रख उतार तम संसार चन लग तरिय सब नानक ब्रह्म बसारो।